मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगै, जिन विछड़िया हर गल आया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन कहो, गुर हिरदे नाल दिखाया, सहजानंद भया मन मोरै, गुरे आगै आप विचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजा सबदा नहद, गुरमत मनुआ गावै, वडभागी गुर दर्शन पाया, तम धन गुरु लिवलावै, गुरमुख हर लिवलावै, रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावै, हम मलमल तोवै पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावै, हृदय गुरमत राम रसायण, जेवा हर गुण गावै, मन रसक रसक हर रसिया गाने, फिर बहुर ना पूख लगावै, कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे, बिन कृपा नाम ना पावै, जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावै। जप नाम करमा, मत माता मत जियो, नाम मुख रमा, संतोख पिता कर, गुरपुरख्या जन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलया, रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा, सदा निर्वाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग भिन्ना, आवो संतो मिल नाम जपाहा, वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियाड़े तुरकर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करीहा जियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टोल टोल मिलिया जियो, मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो, मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो, हर विटड़ियो सदा कोले जियो, वस मेरे प्यारिया, वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो, मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख विगस जियो, हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अनदिन अनदर हस जियो, हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा, नित लै लाहा मन हस जियो, हर आपो पाए हर आपे वेख, हर आपे कार लाया जियो, एक खावे बख्स तोट ना आवै, एक ना फुका पाया जियो, एक राजे तख्त बह नित सुखिए, एक ना पिख मंगाया जियो, सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो, हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपूरा लख लखाही जियो, हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दाल दो दुख लह जाही जियो,

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल बंधन काट किए अपने दास। सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुरपूरे सब परम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उन माए। ओह बेला का चीत न आवे बिन सजाए ताहूं लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे सिर ऊपर ठंडो धर्म राए। मीठी कर कर बिख्या खाए हाँ बंदा हाँ साधो बैर हमरी भूम कौन का ले पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने क्या को कह क्या आख बखाने। जित जित लावे तित तित लगना अपना भला सब का हूं मंगना। सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से अण पे अगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उल्ला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना पुत्र कलतर उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। जो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। जो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े तिसके पल कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधु, चाखत होए रहे बिस्मादु। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसने अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोड़े। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारे री

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जब मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिन सो रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गवन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जो घर जुगते, दिस सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हुए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना। आगाध बोध किस्मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

उतना जो है माया मग्न कछु है मोह है उधर आप तरह संसार राम नाम जप एक ओंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथा हो निदान सोई पुरख जप भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हों तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो प्रायो सोई अपना जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है के है। जो बिबर्जित तिस्यो ने है रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती। बावै मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा कल युग में मिले आए संजोग जिचर आ गया तिचर पोगे भोग जलै ना पाई है राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए प्रे संग ना पावे बहु जोन पवाइए सील संजम प्रयाया गया मन तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा हाव तन मन तो पाक सच नाए हर गुण गावे सही सुभाए। रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पया निदाना अर्तन लाल जाका कछु ना मोल परे पंडारा खूटा तोल। खावे खर्चे रल मिल पाई तोट ना आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चुका देखिया भरपूर।

हर कै मार्ग पतत पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सदवसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिट अग कोट संत प्रसाद जन मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार दृष्टिया वै सब एक अंकार। संत सो प्रसन्न आए वसपंचा अमृत नामृत लै संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रा सबनास है सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ। साध संग पाई निदनामा सा संग पूर्ण सब कामा हर की भगत।

गुर का शब्द तेरा संग सहाई, दयाल पाए सगले जी पाई, गुर पूरा जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा, अनक रसा खाए जैसे ढोर, मुह की चेवरी बांध्यो चोर, मृतक देह सा संग बिहुना, आव जात जोनी दोखी ना रहाओ। अनक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत महे डराया, सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानुख जपै नहीं नाम। कहो नानक जा कहो भय दयाला, सा संग मिल पजै गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, काल कलेश गुर शब्द निवारे।

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कार, सो चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा।

पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजै काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उदरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दर्श पाईऐ वडभागी जां की राम नाम लिव लागी जां कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन माहे ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कौ दीजै गौड़ी महला पंजवां हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवां हिरदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर तन को वा पारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सात आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लखबारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यो आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोबा, दास सलाम करत कत सोबा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाकै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रवरदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरण आई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ। सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवां, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवां, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवे हथ दाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे का सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बाद सा सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवां, हर संग राते पाहे ना जलै, हर संग राते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबे जलाओ, हर संग राते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुन गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साधका मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख ना लागे, हर संग राता अंदन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते परम पौन सै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवां, उद्यम करत शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दो गए। नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम पया कुशल घर आए, पेटत साथ संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवां, कोट मजन कीनो इसनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जामन वस्यो हर को नाम, सगल पवित गुण गाए गोपाल। पाप मिटाए साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने।
ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਹਰ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੇ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੂਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਰਹਾਓ।

कौ नानक कहां पै भाई, अपने सेवकी आपै जरखाई। गौड़ी महला पंजवां, अपने सेवको आप सहाई, नित प्रत पारै बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरै सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए। रहाओ आप मन बसिया करना हारा, पै बिरसे आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवां, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते प्रम्पौ काट किए नह केवल जब ते हमें मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो साध संगत कै पाछै कर कृपा तूर।

संत प्रसाद नानक हर भेटे मन तन शीतल धरापे गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा सहि समायो देव जाको सतगुर पए दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो पयो प्रगास सर्प उजियारा गुर ज्ञान मन प्रगटायो अमृत नाम पियो मंत्र बतया अन पै ठहरायो मान आग्या सर्प सुख पाए दुखै ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताकी ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम भू सुख पाई रे जो प्रभ करै सोई पल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारे खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर दुख पंजन स्वामी जिस पावै तसै निवाजै रे सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तस करते पूर रहे उरत नागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी सरनाई जाते बिरथा नाम कोई रे अरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो बिसारे इहां उहां सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ महा कष्ट काटै खिन पीतर रसना।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेगारे। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलो है मूड नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुरबोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेट परंपो खोया। कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल सा दिया। बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज खेलो आनंद खेलो, रहे फेर पय मेलो, नानक गुर शब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव।

नानक कहे सुन रे मना, कर कीर्तन होए उदार। राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ। जौ लौ हों के सोचो चितवाओ, तौ लौ दुखन भरे। जौ कृपाल गुर पूरा भेटिया, तौ आनंद सहजे। जेती सियानप कर्म हों किए, ते ते बंद परे। जौ साधु कर्मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए। जौ लौ मेरो मेरो करतो, तौ लौ बिख घेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए।

मन जीतो जग सारी। त्रिपत्या गाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चुके अखुट खजाना सतगुर दिया, टूट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई यो अचंभो, सो जाने जन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते धरनी रहाओ। सात सिमरत वेद बिचारे, महापुरख ने ओ कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख ना किन्हू लहया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बुझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावै, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूर्ण होत ना कामा, जल तो कबहू ना बुझत, सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन मरण निवार, नानक जन की तूरा। गौड़ी माला महला पंजवा, मोको हिबद को समझावै, करता होए जनावै रहाओ। अनजानत किश इन्हें कमानो, जब तब कछु ना सादा, दह दिस लैयो मन दौरायो, कवन कर्म कर बादा। मन तन धन भूम का ठाकर, हाँ इसका एहो मेरा, परम मोह कै सूझ सुनाही, एह पैखर पै बैरा। तब एहो कहां कमावन परया, जब एहो कछु ना होता, जब एक निरंजन रंकार प्रभु, सब कछ आपै करता। अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन्हें हो रचन रचाया, कहो नानक करण हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा, हार बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाने, एह ओर है मूसे रहाओ। बरत नेम संयम में रहता, तिनका आड ना पाया, आगे चरण ओर है भाई, ऊहा काम न आया। तीर्थ नाय

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवां मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाव ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माझ महला पंजवां, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा। रहाओ राम गोबिंद जपिंदियां, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारिये, जिस मृत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविए, भव जल पईए पार, मिल साधु संग उधार होए, मुखी उज्जल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ। रहाओ होर साध सब फिकया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान, नानक जाचक दर

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नान

एक अस्थर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नामा प्राणी को हर जस मन नहीं आवै। अहनिस मगन रहे माया मैं कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावै। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी मूढ़ ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो निमखना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावे माया मोह महा संकट बानो ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहो ना लावे नानक मुक्ता है तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिश्रामा वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए जे नहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहा पयो तै बौरा अहन से औद कट नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे बहुर नह पावे कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवै मन हास्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हरस्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोय न देखो मीत किस सेवो किस देव चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हरनाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पिछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचते विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदय मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, हौ मैं करत्या न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

तृष्णा यगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहि सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुरम।

ब्रत सील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दुखं मुक्त भय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन त्यावै अंदर जागै सच लिवलावै सो जोगी मेरा मन भावै। काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप तरै पितरी निस्तारे। सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रह सो निरप होए जैसा सेवै तैसो होए। नर नह केवल निरपौ नाम अनाथ है नाथ करे बल जाओ। पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने। गुर कै शब्दे आप पछाणे साचै शब्द उदर निशाणे। शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा। गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो

ऐसो दास मिला सुख होई, दुख विसराए पावे सच सोई। दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरण धूरी रहाओ। नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा। सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलाखा पेवा। जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा। गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले। गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अनपूजा। संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीने सो तत् विचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया। वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार। रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी। बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवै। बिन गुर अंत न पाए अपेवै, आप भुलाए आपे मत देवै। दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी। प्रहलाद उधारे कृपा धारी,

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

जे सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हों मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्याह त्या गै कवरे भाई मिलै सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जार है सो उबरै गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामण हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत खोवै नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पिर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पसम लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर

अद की तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाहो वाहो जे वाट देखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए। नानक नाम रते पत पाए, दौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया। हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए परम।

प्रथमे ब्रह्मा कल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया। हम हर राखे गुर

चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरुलिय मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीना है आपका सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिया सब ब्रह्म समाया। आरा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा।

जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सुपार, साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जियो राखो हिरदय उतारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा, पंडित हर पड़त जो

आए गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच सोई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझाओ सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार, रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए। हाँ मैं मैला एहो संसारा, नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुआरा, सोजन साचा जे हों मैं मारै, गुर कै शब्द पंच संघारै, आप तरै सगले कुल तारै। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई।

जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावै, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवै, होमै दूजा शब्द जलावै, नामे राते हर गुण गावै, माया दासी भगतां की कार कमावै, चरनी लागै ता महल पावै, सद ही निर्मल सही समावै, हर कथा सुनै से तनवंत दिसै, जुग माही तिनको सब निवै, अंदन पूज कराही, सहजे गुण रवै साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया, नानक होमै मार ब्रह्म मिलाया, गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाणै, अंतर तामस आप ना पछाणै, तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाणै, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे, गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सी दे।

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगती मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे सजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन कर हला गुर मन्या, गुरम कार कुमाए, गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा, मन कर हला विचारिया, विचार देख समाल, बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल। मन कर हला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन कर हला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन कर हला मेरे प्यारिया, सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल। मन कर हला वडभागिया, हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल। मन कर हला मेरे प्यारिया, विच देही जोत समाल, गुर नौनद नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन कर हला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन कर हला वडभागिया, तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन कर हले, भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरखिया काल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ। जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ता ते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवै जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बुझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावै माया अर्थी, न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार बबेक है। दूर ना नेरे सब कै संगा, सा सालाहनो नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जस मस्तक पागा। तिसके हृदय रव्या सोए, मन तन सीतन निचल होए। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम मैं पागे।
ਜਾਸ ਜਪਤ ਵਸਿਆ ਵੈ ਪੰਚਾ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਿਰਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸਜੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਕੋਟ ਮਿਟੈ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਹੋਵੈ ਸਾਧ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਹੋਵੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਰਤਨ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੋਡੈ ਹਰ ਸੰਗ ਹਿਲੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸ, ਜਾ ਜਪ ਸੋ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹਤ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਤ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਥਾ, ਜਾ ਜਪ ਸਗਲਾ ਦੁਲਾਤਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਛੂ ਨਾ ਬਣੈ, ਜਾਸ ਜਪ ਸੁਣ ਅਨਹਤ ਤੁਨੈ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਮਲ ਸੀਧਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਪੂਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ, ਦਸ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੈ ਵਾਸ, ਤਾਂ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਪਰਗਾਸ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिन्ना किरपारिया, हों वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ, बहुत पै हारिया, मैं तकी ओढ़ संताहा, लिहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निम निम लागौ पाए देहो दिखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी ही ना है हर पूर भंडारिया, चाहो दिस जपिया नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निधान अकथ कथारिया, हर दरगह सोभावंत बहाल उडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल्या पारिया, गुर सेवा पौजल तरिया।

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना फिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सह सुमाए दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कु सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रहन सुख सुती जियो अंतर और तारे, अंतर और तारे मिलिया प्यारे। आनदिन दुख निवारे अंतर महल प्रदावे, कामन गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागण गुर कह त्या पारे। आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे, कामन बिनो करे जियो ससब सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार सवारे। जूझ गु एको सच्चा सोई बुझै गुर विचारे। मन मुख काम व्यापी मोहे संतापी, किस आगे जाए पुकारे। नानक मन मुख थाव ना पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद आणी भोली निगुणिया जियो, पिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा, अवगण बख्शन हारा। कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए पंक्ती पाई है। सतगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रहे दिन राती, अंदन रहे लिव लाई। नानक सहजे हर वर पाया सा तन नौनद पाई। गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्र तरिया जाए। राम नाम कर बोए था जियो शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए हर आप लंघाए। इन बै दुत्र तरियै गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवत आयो मरियै। खिन मैं राम नाम किलवे काटे, भय पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पय मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिदनी जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गतनी जानी। हम मैं ता संसारे जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम वखाणै, आप तरै कुल तारे। नानक नाम वसै कट अंतर।

राम नाम वा पाराग मैं अपारा गुरमती तन पाई है सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता आप गुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सतबलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए नामो बीजै नामो जमै नामो मन वसाए नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिरा जियो जा चाख है चित लाए रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रह लिव लाए। नामे उपजै नामे बिरसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदेस सिधाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुरसबदी चित लाए मनमुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मनमुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभदाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बिदाते। पुरखो बिदाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे ओडीणिया कर करे सेवा शीस चरणी मन आस दर्शन माणिया सास आसना

फिर दोष नाही सुखै दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामणु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत था गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे उच्चे मंदिर महलिया पारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाला पार दया ठाकरो सदा कीर्तन गावे जै साध संत एकत्र होवे तहां तुजै त्यावे कर दया माया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचना नूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एका लेग ठाकर जिने सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुमारिया मोहन तुद सत संगत त्यावै दर्स ध्याना मोहन जम नेड़ ना आवै तो जपै निदाना जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्यावहे मन बचन कर्म जे तो द्यारा दे से सबे फल पावहे मल मूत मूड़ जे मुग्ध होते से देख दर्स सुगयाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटंब सब तारे तारिया जहान लहे अभमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन कहया तिन जम नेण ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पुनीत कर पुने पुने बलिहार नानक राम नाम जप पावको तिन किल बिख दाहनहार शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तारु चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधी है काल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरैण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनया चिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुणयानक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो सरण योग
समर्थ मोहन सर्व दुख बेदारो, रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी, बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तुहारी। गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला, विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसै, काल कंटक लोह मोह नासै जी जा कै प्रभसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पही पूर्ण कहला, बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा, मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह साधु मंत। सखी वस आया फिर छोट ना जाई, एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवार, पुनीत करै तिस जंत। सुन सखिए एह पली बिनंती, एहो मतांत पकाई है, सहज सुभाए उपाद रहत होए, गीत गोविंद गाई है। काल कलेस मिटै भ्रमनासै, मन चिन्हया फल पाई है, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, भ्रम मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सवाए। खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख में लाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए। सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे, मेरा मंतन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया। प्रम खोयो सांत सह सुवामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सात सतबुद गुरदेव सात सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा।

नानक एको रव रया दूसर होवा ना होग पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपे सोनो आपे सुख आसनो आपे सुनतो आप ही जासनो आपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखमो आपे अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला कर

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख्यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भगत ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या युग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एउ जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ्याप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप दिवायो ओ आका अंतना जाने को जो जो

होवनहार हो सदयाया, हो अकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवे रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक कै आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मनै प्रो। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरा उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

जा कहो साध कृपाल, साधु संगतो बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो, बिन्ना मैं सुख नाहे, टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे। बार बार जाओ संत सदके, नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार, जे होवो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही, जो सगल त्यागे कै लपटाही। ठहक ठहक माया संग मुवे, उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया, अमृत नाम तहां जी रसिया। ठाकर अपने जो जन पाया, नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं, जय डेरा तै जान। ओवा डेरा का संजम, गुर कै शब्द पिछान। ओवा डेरा या डेरा को श्रम कर कालै, जाका तसु नहीं संचालै। ओवा डेरा की सोमत जान है, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया, नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए, कने न काल्यो बंद। नानक उबरे जप हरी, साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ, टूंडन या मन माहे। संग तुहारे प्रभ बसै, बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग, अहं बुद्ध बिकराल। सुख पावो सजे बसो, दर्शन देख निहाल। तेरी जामै जा मरै, गर्भ जोन दुख पाए। मोह मगन लपटत रहे, हाहो आवै जाए। टहत टहत अब टह परे, साजना सरनाए। दुखे फाहे काटिया, नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। नाहौना तूने छुटै, निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाना रण तेसी जिया, आत्म जीतै कोए। हम मैं अनस्यो लर मरै, सो सो बादु होए। मणि मिटाई जीवत मरै, गुरपूरे उपदेश। मनुआ जीतै हर मिलै, तेसु रतन वेस। अना को जानै अपनो, एकै टेक आधार। रहन दिन सो सिमरत रहै, सो प्रभ पुरख अपार। रेण सगल या मन करै, एऊ कर्म कमाए। हुक्मै बूझै सदा सुख, नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै, प्रभु मिलावै मोहे। नानक परम पौ काटियै, चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यों प्रीत कर, गुणित गोविंद राय। फल पावै मन बांझते, तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की, जास बसै मन नाओ। गत पावै मत होए प्रगास, मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै, ग्रेजो बनै राज। संत संग सिमरत रहो, एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है, जो ताप निवारै आप। प्रतपालै नानक हमै, आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते, तृप्त ना तृष्णा लाथ। संच संच सागत मुवे, नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं, काय पसारो पाव। अनक बंच बल छल करो, माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो, थाक परो गावार। मन कै कामना आवई, अंते हो सरवार। थित पावो गोबिंद भजो, संतै की सिख ले हो। प्रीत करो सद एक स्यो, या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो, सब दे कै हाथ। जे जित लावो, तित लगै, नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया, सबके देवन हार। सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सब जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कहु मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, धद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस शोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुरपुरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तैं बाजे नानक अनहतूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोऊ, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कलजुग मैं पाया, फिरया ओसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिया फासा, फिर फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे, श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस, नानक साध।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अगन माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया टरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै।

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण, मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कहे रह, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम, तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत।

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस कौ सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जेह प्रसाद सुख से सुईजै, मन आठ पहर ताका जस गावीजै। जेह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगै मान पावै, नानक पासे ती कर जावै। जेह प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै। जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जेह प्रसाद या पूखन पहरीजै, मन ते सिमरत क्यों वाल सकीजै। जेह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जेह प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह है। जे प्रसाद सुनै करन नाद, जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जे प्रसाद बोलै अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न।

लया, जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत, साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान, साध कै संग बुझै प्रभनेरा, साध संग सब होतन बेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमहे समानी, साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनयाई, साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्ता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग मैल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै, साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुरदेवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक प्रहरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहलो संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नान कोट मदे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

संत का दोखी कितै काज ना पहुंचै। संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है। संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावै ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पाप की ईंधन नहीं तरापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

सन अष्टपदी अविनाशी ब्रह्म मैं राख मानव की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहिर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सदजा कै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मैं राज योग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देवहारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जंदे जन दास नाम ते आवै से ते गुण में जा को परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करै करंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभ नासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिदकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाए समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसै बजाय तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दै प्रवेश सत निरत बूझै जे कोए नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करना हार अवरना बुझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योत पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਰ ਬਿਬੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ। ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕਰ ਕਉ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਹ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚੇ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨਾ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿਓ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਸ਼ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜੰਤਰ ਬਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹ ਬਾਦਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸੁਆਏ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ, ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨਾ, ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕੈ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਜਿਸਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ,
सुन कर बचन करनिया गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कनै ना पाई, अनक भगत बंदन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखै हर हरेक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, अंध भया दुख नाटे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देख है नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा को करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यो पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन न लागे कोए, जा कर दै बसे हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, इओ रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यो पाप ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना, सुत मीत कुटांबियर बनता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, असहस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी,
जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना, ना बिसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कह तो रहत गत पावो। सार पूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैलो, बिन सजा

आप अनक विस्तार एक ते पै एक आराध प्राष्ट गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मंग तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुब्र परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेव की नोसदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सा पूरी रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार बिन भगति तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास नानक नाम।

जब अपने आप अपार ब्रह्म ता मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मोत कहो किस कहो गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कहो न अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगमय पार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शर शिदर लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किस भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करण हार नानक करते का नहि सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप पुरत हारे तब सगन अब सगन कहां विचार है। जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गा जानो आप। जय अशाला शेदा भेद सम

जह आप रचियो पर पंच आकार त्यों गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अब

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरैतन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन महे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण।

को खाट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथा अनेक उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुणअंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसयो पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए।

मन में चितव पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तैं बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिरसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल सांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई निचड़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली कर...

पौड़ी। सत सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि और तारिया, सत सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया, बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेलेओन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जे सतगुर भावसी, गुर पूरा करी वसाय सी। जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखण कौ हर आप होए, होर केती चख चख जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुरसिखा कै मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई। हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई। गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दी बाण हार, तिन सब आण निवाई। जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगह ते मुखी उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगै धूड़ तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी। हौ आख सलाही सिफत सच, सच सच्चे की वडियाई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आ गाई। एहो हरा से ही जान दे, जो गूंगे मिठाई खाई। गुरपूरा हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई। श्लोक महला चौथा। जिन्ना अंदर उम्र थल, से ही जान सूलिया। हर जाने से ही बिरौ, हाओ तिन विटौ साध कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख, मेरा सिर तिन विटौ तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमावै, हाँ गुलम तिना का गोलिया। हर रंग चलू लै जोर ते, तिन पिनी हर रंग चोलिया। कर कृपा नानक मेल, गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा। औगणी भरिया शरीर है, क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है, मलहम मैं कड्डै धोए। सच वणजै रंग स्यों, सच सौदा होए। तोटा मूल ना आवै, लाहा हर पावै सोए। नानक तिन सच वणजिया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी। सलाही सच सलाहना, सच सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी अराध्या, से जाए रले सच नाले। सच सच्चा जिनी ना सेव्या, से मनमुख मूड बेताले। ओहो आल पताल मोह बोल दे, जो पीता है मद मतवाले। श्लोक महला तीजा। गौड़ी राग सुलखणी, जे खसमै चित करे। भाणे चले सतगुरु कै, ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

मंत्र बताय हर रसखाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

ताया प्या गणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बणत है तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलता है सतगुर नो मिले सो हर मिले नाही किसै परतै सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाई चित क्यों सास ग्रास विसारी है बहद्या उठद्या नित

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगह ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखां की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राए जम कंकरा नो आख छड़िया। एस तपे नो तिथे खड़ पायो, जिथे महा महा हत्यारिया। फिर एस तपै दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वर्तिया, सो नानक आख सुनाया, सो बुझै जो दईए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई, हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वड्याई, बख्शिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाणा सर पर उगड़ै, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड्याई। पौड़ी महला पंजवा, भगत जना का राखा हरियाप है, क्या पापी करी है, गुमान करे।

जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करतै सब हिर लई बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखी है अंतर तिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली जिन माया मोह।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर्य चंद करै उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मोह कै फाद काल सर संध्या, रहा कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चब कुमारों। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे काहे होए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भए राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पांच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जानै, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तनै ना होई। गौड़ी झगड़ा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सौ काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सौ मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहज। तिनते सदा डराने रहिए रहाओ। आप ना देहे चुरु पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चालै, आप गए और नहूं कहलै। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहु खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर नामा।

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है, देखो बिचारी, इसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़ हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत् नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई। ए संसा मोको अंदन व्यापै, मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपांड पिंड तै नाही, रचनहार तै नाही, जोड़न हारो सदा अतीता, एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै, जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक, को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती, ओआ का मरम ओही पर जाने, ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा, सुन गुफा मैं आसन बैसन। कल्प बिबरजित पंथा, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी, मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही, अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो, कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये, तोल ना तुलिये, पाचन से अढ़ाई। जो कर पाचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया, चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै, नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी, कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित घट नाम नाई उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया, मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिले सिद्ध पाई है, के ओहो जोग के भोग, दोह मिल कार्य उपजै, राम नाम संयोग। लोग जाने

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कपके कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबन अरसुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन कौ मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिन सजाए हंकारी गौड़ी

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा से

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम करका, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापो रे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना। शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन अखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

तै मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहो, जा को तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह, ता होए न खियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कत ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी। चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै। चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, झगर किए झगर ही पावा। नया निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा पायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कत ना जावा। रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई। जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना। चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

बंदक होए बंद सुध लह, पब्बा पेद पेद मिलावा, आपो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पुबत पहचानिया, मम्मा मूल गया मन मान, मरमी होए सो मन को जानै, मत कोई मन मिलता बिलमावै, मगन पया ते सो सच पावै, मम्मा मन स्यो काज है, मन सादे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कहे कबीरा, मनसा मिलिया ना कोए, एहो मन शक्ति एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जाओ उन मन रहे, तो तीन लोक की बात कहे, यैया जाओ जाने तो दुर्मत हानो, कर बस काया गाओ, रण रूतो पाजे नहीं, सूरो थारो नाओ, रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया, एहरा छाडे ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे ले मल्लावे, अंत ना जाए परम सच पावे, आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे, तो अलह लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना जस गावे, बिसन मिले सब ही सच पावे।

ससा सोनी का कर सो दो, घट परचा की बात न रो दो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा। ससा सो सहसे सवार, सोई सही संदे निवार, अल्प सुख शाड़।

है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लखवी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जां कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की। सलोक पंद्रह थित्ती सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ। थित्ती अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मल। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिस्ताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगे रहो कर्म तर्म की सूल ना सहो सातै समकर बाचा जान सातै सतकर बाचा जान आत्म राम लेहो प्रवान छूटै संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निदराया गुरगम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवे द्वार कहो साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर मैं रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद वेण सहज महवाए सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत घर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंकलै सुदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ लो महल न लाभै जान रमत राम स्यो लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बद्धक जन तेउ मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई रहाओ। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सोवाही। आबा दान सदा मशहूर, उहां गनी बसे मामूर। त्यों त्यों सैल करे ज्यो भावे, महरम महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास चुमारा,

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रमफास, प्रेम

तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड्यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचर करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई तुद आपे सिरहिट सब यो पाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जान होई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदे कर दूजा। सुन वड्डा आखे सब कोई केवड वड्डा डीठा होई। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिलै नाही ठाकराईया। आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा। आसा

तो आसा महला पहला जे दर मांगत पूक करे महली खसम सुने भावे तीर्क भावे तके एक वडाई दे जानो जोत ना पूछो जाति आगे जात ना हे रहाओ आप कराए आप करे आपो लामे चित धरे जा तू करन हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप यो पाए आपे दे आपे दुरमत मने करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुखा नेरा विच्चों जाए साज प्यारा आप करे अवरी को साज ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछना ले आसा महला पहला ताल मदीरे कटके काट दोलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कलका पाओ जति सती कह रख उपाओ नारक नाम विटों कुर्बान अंधी दुनिया सा

गुरु पासों फिर चेला खाए, ताम प्रीत वसे कर आए। जेसो वरिया जीवन खाण, खसम पछाणे सो दिन प्रवाण। दर्शन देखे दया ना होए, लय दते विण रहे ना कोए। राजा न्याओ करे हथ होए, कहे खुदाए न माने कोए। मानस मूर्त नानक नाम, करनी कुत्ता दर फुरमान। गुरप्रसाद जाने मेहमान, ता किस दरगह पावे मान। आसा महला पहला, जेता शब्द सुरत तुन तेती। जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना। अवरना दूजा कहो माई। साहिब

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम मैं माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी, हर सिउ राती शब्द विचारी, आप तरै संगत कुल तारै, सतगुर सेव तत् विचारै, हमरी जात पत सच नाओ, कर्म धर्म संजम सत पाओ, नानक बख्से पूछना होए, दूजा मेटै एको सोए, आसा महला पहला, एक आवै एक जावै आई, एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावै, से कर्महीन हर नाम ना त्यावै, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौ जल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ, जिन कौ आप लय प्रमेल, तिन कौ काल न साकै पेल, गुरमुख निर्मल रहै प्यारे, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारे, बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागै, नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै, आसा महला पहला, निम्न उपाय लगो।

काया ब्रह्मा अमन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलकल लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तना जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यो मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना। दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जान नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे। गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार। हम पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै। मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाहा किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला। चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जां जत जोगी तां कायां भोगी। दया दिगंबर

एक ना परिया गुण कर पोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इं क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से ज रवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

साहुरडे तन सच पिछाणिया सहज सुभाए अपना पिर जाणिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवै ता कामण कंतै मन भावै कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सधी से जै रवै पुतार आसा महला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे मोहे भरम भुलाई मेरे साहेब हाँ कीता तेरा

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्पते आगी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे क्यामत शूशै पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रता सद बैरागी जुवे जन्म ना हारै कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोसना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोसना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सच्चै बैराग खर दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कहो गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता कहो लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द

ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रह थिर नाम समाणै। जमन मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहि समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनों बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहुवाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कड़चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हरसो चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवां काफी महला तीजा, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, हर कै पाणे सतगुर मिले, सच सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाओ, इस जोग में निरपो हर नाम है, पाईए गुर विचार, बिन नावे जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करे, बूझे सच सोई, हर कै पाणे सा लाही है, पाणे मन्ने सुख होई, हर कै पाणे जन्म पदार्थ पाया, मति उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मंडा साई, जो तौ पावै सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी,
जन्म मरै जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अपमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग में लाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्टि जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदै सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया। गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर। मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग। दूजे पाए पवै बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सैना।

नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मल तारी, विण गुण जन्म मोए अहंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मथ तत कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम।

मेरा मन ऐसी भगत बने आई, हाँ हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन, कब को राग तुने उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, तब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाप पसारे, कब को हाथ फसारे, हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे, तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे, लोक पतीने ना पत होए, जन नानक हर हृदय सत्य आवो, ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा, सत संगत मिली है हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन, अज्ञाना दे राजाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे भाई, हम जन के तो वह पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अनदिन हर लिव लाए, जो इच्छाओ सोई फल पावो, फिर भूख न लग आए। आपे हरे परंपर करता, हरे आपे बोल बुलाए, सही संत भले तुद पावे, जिनकी पत पावे थाए। नानक आखना राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हरे अपने, गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर अठवां, राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा। आया मरण तो राहो हम मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया, चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया, जुए खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चे सच्यार महल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है, अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वसजा नेक मनमुख नहीं पाई है, हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन परगास सच्चा पाई है। राग आसावरी कर सोलवें के दो, महला चौथा सुधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाँ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं, सतगुर मोको हर नाम बताया, हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकाऊं रहाओ। हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हाँ हर बिन रह ना सकाऊं, हाँ एक खिन, जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई, हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकाओ, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बैराग बिरक्त पायो, हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रह ना जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवा, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंतबो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप। इच पूरे मनकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवा, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हो कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्र मिलियो नानक पै अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीय मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवक हो किसकी कान, सगत पूला फिर बेबान। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चाग सब दे को आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै यानी। देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास। अमोल रतने अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत। सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी। सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया। सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद। तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया। सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलयो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माणे, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो प्रै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिर हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसब दी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ है, अब पकड़े नहीं।

हर हर राए, नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरे संग सहाए। आसा महला पंजवा, अरड़ावै बिललावै निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लय सधावै, अणहोंदा अजगर भार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै, भगत जना कौसदा आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाक साल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरे पुगे भोग, आचार करे शोभा में लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक कौ हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवै, जन नानक हर कै अंक समावै। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैण विहानी सह सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई। पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड परानी। जो जन्म सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन ते

राज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महा बचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तांदे अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जानो

साध संग रस पाया तृप्त अगाए सही जन पूरे सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता। भरम मोह त्रोह सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच ना साकै काहू बात, आगै ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखै ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कतहु नाही खसमै एवै भाणा, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा तत योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे पंच जनाले वसगत रखे मन में एकंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै रबाब पखाव, जो ताल घुंगरू अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पखारै संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरिया गै सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा ताका जन्म मरण दुख भागै, ऐसी निरत नरक निवारै नानक गुरमुख जागै। आसा महला पंजवा अदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नौके हर कुकरत न लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काई तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आग्या ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काट्या रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहियै, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेपना को भख है। ओहो सुख ओहा वड़ियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साह संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तराओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पहे जन्म मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणे।

ओरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुटे ओरी सोर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटे ओरी दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुने ओरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्यान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास धरी तिन माया

सर्व सुखा बने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाओ। हुकम बूझ रंग रस माने, सतगुर सेवा महान निर्वाणे। जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवान, नामृता सोई निर्वाण। जा को मिलियो नाम निधाना, पंडित नानक ताका पूर खजाना। आसा

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तहै दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, साध सब जा का निशान। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंडित नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला वर्यंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो रच नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे,

मैं माहर उनकै संगतू होई है जाहर उनकै संगतू रखी पपोल उस बिना तू छुटकी रोल उनकै संग तेरा मन महत उनकै संग तुम साग जगत उनकै संग तेरी सब थाटी उस बिना तू होई है माटी ओह बैरागी मरै ना जाए हुक्मे बांदा कार कमाए जोड़ विछोड़े नानक थाप अपनी कुदरत जाने आप आसा महला पंजवा ना ओह मरता ना हम डरिया ना ओह बिनसै ना हम कड़िया ना ओह निरतन ना हम भूखे ना उस दुख ना हम कौ दुखे अवरना को मार नवारा जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ ना उस बंधन ना हम बांधे ना उस तंदा ना हम तांदे ना उस मैल ना हम कौ मैला उस आनंद ता हम सदकेला ना उस सोच ना हम कौ सोचा ना उस लेप ना हम कौ पोचा ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा जाहो निर्मल ता हम जचना हम किश नाही एक ओही आगे पाछे एको सोई नानक गुरखोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा आसा महला पंजवा अनक पात कर सेवा करिए जियो प्रांतन आगे धरिए पानी पखा करो ता जब मान अनक बार जाइए कुर्बान साई सुहागन जो प्रभाई तिसकै संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रण बसै जी नाल माथे भागता पावो संग मिलै स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब नेमा कर्म धर्म अर्पो सब होमा गर्भ मोह तज हो बोरेन उनकै संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आरा दो दिन सरैन ए सेवा सादो पय कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार जी प्राण कटकटे आधार रहाओ प्रभ की प्रीत पय सगल निदान प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम प्रभ की प्रीत सद सुभावंत प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत प्रभ की प्रीत एह भव जल तरै प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै प्रभ की प्रीत सगल उधार है प्रभ की प्रीत चले संगार है आपो कोई मिले ना भूले जिस कृपाल तिस साध संग कूले कहो नानक तेरे कुर्बान संत ओट प्रभ तेरा तान आसा महला पंजवा भूपत होए कै राज कमाया कर अनर्थ बिहाजी माया संचत संचत थैली कीनी प्रभ उसते डार अवर कौदीनी काच गगरी

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गयो सुहा ऊंचे मंदिर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इनस्यो प्रीत करी कनेरी जो मिलिए तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद में खोटी डीठी अगर उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ै नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक

ओवा की महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिने अवर ना जाने। कोट कोट अग काट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछय सुरदेव अमोग दर्स सफल जाकी सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजे गुणतास। आसा महला पंजवां सगल सुख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साधका संग जिस पेड़त लागे प्रवरंग। गुर प्रसाद ओय आनंद पावे जिस मृत मन होए परगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ। वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय ताकि गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लेहोर लाए नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवां आठ पहर उदके सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी। बिरथा काहू छोड़े नाही बहर बहर तिस लागे पाई। साल ग्राम हम

बैकुंठ जहां का चवर सब ऊपर झूलै ता का धूप सदा प्रफुलै काट काट संपट है रे जाका अपग सभा संग है सादा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ो हर साल गे राम कहो नानक गुर की नो दान आसा महला पंजवा पंच पदा जेह पैंडै लूटी परिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरै साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रहियो जनते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लिखा भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ता कै अरहद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने जब जब जीवा सारंग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ता की परम गत होए आसा कर सतवां महला पंजवां हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मनै आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जा कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या पिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सोहागन सिंगार करी मन मेरे की तप तहरी भलो भयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जान्या रहाओ हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा आसा महला पंजवा माथे त्रिपुटी दृष्ट करूर बोले कौड़ा जेबा की फूड सदा भूखी पिर जाने दूर ऐसी स्त्री करामो पाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोहे सबो जग बादा हमें पचै मन मुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकर हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ
संग होवत कौ जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर। जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरौ एक, गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया। कल मल दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे पाई। हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर। गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसिया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे। जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे। अवर काहू पह भव ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब। गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूट नाही, भली भांत सब सह समाही। जा की बख्शना मेटै कोई, मनवा साई ऐसा चा सोई। सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख। मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ। बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई। रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी सब

मन बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीड़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी शन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण कहो नानक गुर कौ कुरबान। आसा घर अठवां

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार ओह आद जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहू नड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परै सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया। रहाओ कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड़ पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब प्रम पाओ पागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा। रहाओ दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिया थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया। रहाओ वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी। रहाओ परता कह सो मानिए, एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिशायरी। आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी, तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री। साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जो मन के परमा, परम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे। रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसम बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ। रहाओ सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी, नाम दान गुरपूरै दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे न्योर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवा महला पंजवा। जिसनो तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री, सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने। दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाले लेखे बैसे, लेखे लेंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवा, अपुष्ट बाते पई सिजरी। दूत दुष्ट सजनई, अंधकार मैरतन प्रगासियो। मलीन बुद्ध हशनई, जो कृपा गोबिंद पई। सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोय ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खबतो नाही, साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने, अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो, जन नानक हर

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेलरी दिखायो रहाओ खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो खिनहू जोग ताबो पूजा खिनहू परमायो खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवा कर सतारवा आसावरी एको अंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां गहड्यो मूड नर हां अन ना उपाव कर हां तौ निकसै सरन पै री सखी थिर थिर चित थिर हां बन ग्रह समसर हां अंतर एक पिर हां बाहर अनेक तर हां राजन योग कर हां कहो नानक लोग या लोगी री सखी आसावरी महला पंजवा मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां दृढ़ संत मंत ज्ञान हां।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जोन न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी नामे राता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाने गुरमुख निर्मल नाम वखाने। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास किल विख दो काटे हर नाम परगास। कर बिचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा सागत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत राख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुरनर सह समाद। भरपुर तार रहे मनमाही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भक्त की संगत राम। बंधन तोरे सह त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हो मैं डन सहे राजा मंगे दान। बंधन सबदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टिया, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवे धूड़, महला अंदर होंदिया, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेस रहाओ। जदो सिया वी आहिया, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईया, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शोहारे खांदिया, मन से जड़िया, तीन गल सिलका पाईया, तुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, एक ना वक्त खुवाई है, एक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहन ना मिले खुदाए, एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखिया बैबै रोवे दुख। जो तिस पावे सोथी है, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सैनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जरवण देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मैला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण मैं तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी, जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है, दुख सुख तेरा पाना होवे, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई पिंड पवे जियो चल।

पेटियो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो ने साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावै सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ समरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए जो जन राते राम सिंह प्यारे अंतना काहू जाए हर जिनी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए अंचल गहया साध का नानक पैव सागर पार पराए जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेट हर राए सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा जीवन दर्श दिखाए जो जी तुते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कह न जाए साची प्रीत ना टुटे प्यारे जो जुग रही समाए जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर जाए नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सही सुभाए सब तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन भेट प्रभ जाता काट काट रव रहया सब थाई पूर्ण पुरख विदाता गुरपुरा पाया नाम ते आया जुए जन्म ना हारे बिनवंत नानक शरण तेरी राह कृपा तारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केद गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर तूड़ी नाई मैल गवाई जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेसर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरी अपने प्रभ पावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदया किश आन ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुणित गाया सब दुख मिटाया हम मैं बिनसी गाठे प्रोसै सुभाई छोड़ ना जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किश्यान ना मीठा ज्यो राती जल माछली त्यो राम रसमाते राम राजे गुरपुरै उपदेसिया जीवन गत पाते राम राजे जीवन गत स्वामी अंतर जामी आवलिए लड़ लाए हर रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ ना कट हूं जाए प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटै ना दाते जल संग राती मछली नानक हर माते चातक जाचै बूंद ज्यों हर प्राण आधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबहू ते प्यारा राम राजे सबहू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास ग्रास ना बिसरै कबहू गुर सबदी रंगमाणी है प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जब भरम हो दुख डारा चातरक जाचै बूंद ज्यों नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मनोरथो पूरा राम राजे टाठी पीत भ्रम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लिखाए सब ने दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पतत पावन साधु धूरा हर मिले नारायण नानका मनोरथो पूरा आसा महला पंजवा शंत कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तन राम स्यों भेटत साध संगात शंत जल दुध न्याई रीत अब दुध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उलझो अल कमले बासन माहे मगन एक खिन पी नाहे टरै खिन्ना हे टरिय प्रीत हरिय सिंगार हबरस अर्पी है जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तै साध संग ना डरपी है कर कीर्त गोविंद गुणिए सगल प्रायश्चित दुख हरे कहो नानक शंत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चातरक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय हो मन दी जय तलाइय चित मुरारी मान न की जय सरन परी जय दर्शन को बलिहारी गुरसो प्रसन्ने मिल नहा विशुन्ने तन देंदी सह स्नेहा कहो नानक शंत अनंत ठाकर के हर स्यो की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्ने हो चितवै आस घनी कद नियर देखिए कोकल अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करीजै मान न दीजै एक राती के हब पाहुणे आप क्या रंग लायो मोहर चायो नंगे आवण जावणे थिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूट समोह जो कीती है कहो नानक छन दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखिए निसकुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओडवै मन ऐसी प्रीत की जय जैसी धरन पतार उर्जी परै सिवै एह मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोकरी जय हब खुशियां रंगमाणे।

रंगलाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने गुरथिया साखी तां डिठम आखी पर जेहा अवर ना दिसै कहो नानक छन दयाल मोहन के बन हर चरण गिजै ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवां सलोक बन बन फिरती खोजती हारी बहव गाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे संत जा कहो खोजै असंख मुनिया नेक तपे ब्रह्मे कोटा राधै ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन कहो निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझै आराध ते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट बिसन अवतार संकट संकर जटा तार चाहे तुझे दयार मंतन रुचि अपार अपार अगम गोबिंद ठाकर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावै जा किन्नर गुण बणी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मेरे उधार कोट देवी जा को सेवै लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जा को आराधै पौन पानी दिन सरात नखियत्र ससियर सूर त्यावै बसद गगना गावै सगल खाणी सगल बाणी सदा सदा त्यावै सिमरत पुराण चतर बेदै खड़ शास्त्र जा को जपात पदत पावन भगत वछल नानक मिलिया संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजंत जो सेवै तेती न जाए गनी अवगत अगंत अथा ठाकर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचके एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए शीस साधै धर चरणी। आसा महला पंजवां सलोक उद्यम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवै दुख दर्द भ्रम जाए संत नाम जपत गोबिंद न अलसाई है पेटत साधु संग जमपुर न जाई है दुख दर्द ना पवे आपै नाम सिमरत सद सुखी सास सास आराध हर हर त्याय सो प्रभ मन मुखी किरपाल दयाल और साल गुणनिध कर दया सेवा लाई है नानक पयम पै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद न अलसाई है पावन पतत पुनीत नाम निरंजना परमा देर विनाश ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जाकर दै वसया मिटे तसै विसूरिया आगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिद्धे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उदरन हर हरे सागर संसार भवोतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजै सुनी उदरन संत संग बिदे नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वछल हर बिरद आप बनाया जय जय संता राधै तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाए सह सुवाए भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगा दै दस एक तह दृष्टाया नानक पयंपै चरण जंपै भगत वछल हर बिरद आप बनाया। आसा महला पंजवां थिर संतन सुहाग मरै ना जावै जा कै गृह हर ना हो सो सद ही रावै अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नवता निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकर दै दस पूर्ण सा सदा प्राण पात गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम भावे नानक बखाणै गुर भजन जाणै थिर संतन सुहाग मरै ना जावै जा कहो राम पतार तां कै अनद घणा सुखवंती सा नार शोभा पूर बणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु
मदरबानी प्रहमानी थिर सुहागता का बना नानक वखाण गुरबचन जाने जा को राम पतहारो ता कै अनंत कणा आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताज आप मिटा संताप आप न जान आई है शरण ही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास दासी ताजो दासी कर जोड़ दिन रहन जागी है नानक वखाण गुरबचन जाने आओ सखी संत पास सेवा लागी है जा कै मस्तक भाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जनसा संग पाया साध संग हर कै रंग गोबिंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तने त्यागया मन सांस है सुभाव उठा आनंद मंगल गुण गाया नानक वखाणे गुरबचन जाने जा कै मस्तक भाग से सेवा लाया आसा महला पंजवां श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कह जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल संत मिलो संतन कै संग।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीतना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। प्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निदाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत ना जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि सरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जै देखो तै संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिध जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच्छ पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै आंदेनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ सिर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀ।

माल जोबन छोड वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़े नाहीं लै चले कत गलाव्या। हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावया, लभ लोभ अहंकार माता गर भया समायण। नानक मिर्ग अग्ञान बिनसे न मिटाय अवन जायण, के मिठे मख मवा क्यों लय उडारी। हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी, तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो, गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी, कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया सा संगत आप होवा आप जग तराया। राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करणी, नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती, रावो सवा परणा प्रभ संग सोहंती। संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी रावी है, सा साच तार जीवा प्रापे खर गुण गावी है। बिरहल जाया दर्स पाया आम्यो दृष्ट सिंचंती, बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी मिले जिस खोजंती।

द्वापर रथ तपै का सत अग्यर्थवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड अग्यर्थवा हो। महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी, सच मैं अच्छ साच रहै।

जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी लै आया वृंदावन मैं रंग किया। काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बसर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे।

तिस कही ऐसा वास नानक हुक्म न चलई नाल खसम चल अरदास। श्लोक महला दूजा।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन, रहाओ नैन देख पतंग उर्जै, पस ना देखै आग, काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा, कियो सिंगार मिलन के ताई, हार ना मिले जग जीवन गुसाई। हार मेरो पेर हाँ हर की बहुरिया, आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा, तन सुहागन जो पी भावे, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मानो, सहजेरिया समाई, सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पशानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई, गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लहरी आई, बड़ी का सुहाग टर्यो, लहरी संग पहिया मेरा जेठी और तरयो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ, इन मुंडियां ने मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमुआ लावा रहाओ। कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां ने मेरी जात गवाई। आसा रहो रहो री बहुरिया, कुंगट जिन काडे, अंत की बार लहगी ना याडे रहाओ। कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तोहे जन लागे, कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे रहाओ। जो तन चीरा अंग ना मोरो, पिंड पर तो प्रीत ना तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। आसा कोरी को कहूं मर्म ना जाना, सब जग आणत ना योता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिशाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना, लोकपतीने कछु ना होवे, ना ही राम याना। पूजो राम एक ही देवा, सचा नावन गुर की सेवा रहाओ।
जल कै मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नावै जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै। मनो कठोर मरै बानारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरै हाड़म्बै ता सगली सैन तराई दिन सनारैन बेद नहीं शास्त्र।

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा आनंद करे सदकेला रहाओ।

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडे दिया छे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आईऐ बिन नावै पूजना होए रहाओ बाहर दे पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मांझी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रह गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जा की भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके तिर पवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल मन मुख रहने आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेवै गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रहै जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
गोबिंद प्रीत सियों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल होवा ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचै सब कोए कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आग्या जियो धरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुरप्रसाद मेरा मन पीजै एहा सेव बनी जियो रहाओ हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्तै हर मेरा साख अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलद्या नाल ना जाई हर मेरा तन मेरा साथ चाले जहां हाँ जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा होवा कहना कछु ना जाई गुजरी महला तीजा जोग माहे नाम

कर कृपा लोच मेरे मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिर नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिंदर गय हर हर दे वड्याई। धन धन सा बास कह प्रभ जन कहो, जन नानक मेल लय गलाई। गुजरी महला चौथा, गुरमुख सखी सहेली मेरी। मोको देवो दान हर प्राण जीवाया, हम होवे लाले गोले गुरसिखां के। जिना अंदन हर प्रभ पुरख ते आया, मेरे मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया। मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया। रहाओ जा हर प्रभ भावै, ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड भागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भारहीन पापी जम खाया। आप किरपाल किरपा प्रभ धारे, हर आपे गुरमुख मिले मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा, जिन सतगुर पुरख जिन हर प्रभ पाया। मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया होवा। वडभागी हर नाम ते आवे, भाई रे मोको कोई आए मिले हर नाम दृढ़ावे। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे। रहाओ तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर स्यों चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुखे अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल ना लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से भागहीन मोहे मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अंध करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। एको अंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा कर तीजा। माई बाप पुत्र

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदाया पर लाई विचे ग्रस्त।

काहे रे मन चित वह उद्यम जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोग सुत बनता कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाए ठाकरो काहे मन पौ करिया। उड़े उड़िया वैसे कोसा तिस पाछे बचरे शरिया। उन कमन खलावै कमन चुगावै मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अठ सिधान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सतबल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खटकर्मा इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा तारी। कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवां हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसै हर तन जागत सूता रहाओ। हर तन इशनार हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना। हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना। हर तन मेरी चिंत विसारी हर तन लाया धोखा हर तन ते मैं नवनिद पाई। हाथ चरियो हर थोका खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया। एहो मन हर रंग रंगे। गुजरी महला पंजवां जिस सिमरत सब किले विख नस। पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सधी जापो जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ। सतगुर तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनदयानंता। रंग तमासा पूर्ण आसा कबह ना व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा एहो मन होवो हर चरणा हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो ज्यों बूंदे चात्रक मौला। गुजरी महला पंजवा मता करै पछम कै ताई पूर्व ही लै जात। खिन मै थापो थापनहारा अपन हाथ मतात। स्यानप काहू कामनायात जो अनरूपयो ठाकर मेरा होए रही हो बात रहाओ। देश कमावनो तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास। लस्कर नेव खवास सब त्यागे जंपर उठ सिदास। होया नान मन हठ की दृढ़ता आपस कौ जा नात। जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। सह सुभाए पय कृपाला ते जन की काटी फास। कहो नानक गुर पूरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास। गुजरी महला पंजवा नाम निधान जिन जन जपयो तिन।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही कौ प्रभयाही, नानक टेक पही करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवां कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हरस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवां ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवै तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करतै जां कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवां आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंत सेती कर जाई है जां ते काल न बिरथी जाई है। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा ध्याई है रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते हर दास है पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवां विश्वंपर जियन को दाता भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दै ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाय जिस तू राखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवां जन की पैर सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै।

कौडी कौडी जोरत कपटे अनक जोत कर धायो बिसरत प्रभ के ते दुख दनी है महा मोहनी खायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो ना मोहे कमायो गोबिंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरण आयो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्योहार मिथिया पज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे टेक कर कृपा गोबिंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर शरण ता की गही मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा कर चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाण पास।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटिया जमजाल। काम क्रोध लो मोह मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत। सर्ब बेद प्रमते पुकारे कते नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री तर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड़ जम दूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेस मिटे पै परमा।

पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसतो कमन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा रहाओ। सुखियन मैं सुखिया तू कही है, दातन सर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कही है। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कही है, भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती, जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कही है, आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा, वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा, शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए, गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता, इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा, करमन सिर करमा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा, हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बोलावे त्यो बोले स्वामी, कुदरत कमन हमारी, सा संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा, घर चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, नाथ नर हर दीन बंधव, पतत पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुणनिध, सबर स्वामी सेव, हर गोपाल गुर गोबिंद, चरण सरण दयाल केशव, तार जग पव सिंध रहाओ, काम क्रोध हरण मद मोह दहन, मुरार मन मकरंद, जन्म मरण निवार धरणी तार, पत राख परमानंद, जलत अनक तरंग माया, गुर ज्ञान हर रिद मंत, शेद अहम बुद्ध करना मैं, चिंत मेट पुरख्यानंत, सिमर समर्थ पल मुहूर्त, प्रभ ध्यान सह समाद, दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण, जाची है रज साध, मोह मिथन दुरंत आसा, बासना बेकार, रख धर्म परम बिदार मंते, उदर हर निरंकार, तनाड आड़ पंडार हर निद, होत जिना ना चीर, खल मूड खल मुग्ध मूड कटाक श्री तर, पय गुणमा तीर, जीवन मुक्त जगदीश जप मानो, तार रिद प्रतीत, जी दया मया सर्वत्र, रमण परमहंस रीत, देत दर्शन सरवण हर जस, रसन नाम उचार, अंग संग भगवान प्रसन्न, प्रभ नानक पतत उदार, गुजरी की वार महला तीजा, सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा, एहो जगत ममता मोवा, जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे, ओए सदा सदा जन जीवते, जो हर चरणी चित लाए, नानक नगरी मन वसै, गुरमुख सही समाए, महला तीजा, अंदर सहसा दुख है, आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कवे ना जागे, माया मोह प्यार, नाम ना चेतै शब्द नामी चार है, एहो मन मुकाया चार, हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुवार, पौड़ी अपना आप उपायोन, तदो होर ना कोई, मता मसूर त्याप करे, जो करे सो होई, तदो आकाश ना पाताल है, ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है, ना उपत होई, जो तिस पावे तिवे करे, तिस बिन अवर ना कोई, श्लोक महला तीजा, साहिब मेरा सदा है, दिसै शब्द कमाए, ओह अवाणी कदे नाहे, ना आवै ना जाए, सदा सदा सो सेवी है, जो समय रह समाए, अवर दूजा क्यों सेवी है, जमै तै मर जाए, निहफल तिनका जीवया, जे खसम ना

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम त्याया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नामो दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़ियां विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जां कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मन मुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाएं दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया जुग भरमिया, थिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलियो पाए, जां हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै न जाए। पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावै सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाएंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाहो वाहो बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाहो वाहो करत्या प्रपाया, करम प्राप्त होए। महला तीजा, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्र मिलया आई, वड भागिया वाहो वाहो मोह हो कढ़ाई, वाहो वाहो करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाहो वाहो करम प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ को सत अभिमानी, परम पूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा,

आप दया कर दे, नानक वाह वाह गुरमुख पाई है, अंधन नाम लाए महला तीजा। बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लुची है, विण कर मैं ना पाया जाए। जिन्ना अंतर लो विकार है, दूजे पाए खुवाए। जमन मरण ना चुकई, हम मैं विच दुख पाए। जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया, सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब ना हो वई, ना ओए दुख सहाहे। नानक गुरमुख उबरे, सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी ढाडी तिसनो वाखी, जे खसमै तरे प्यार। दर खड़ा सेवा करे, गुरसबदी विचार। ढाडी दर कर पाए सी, सच रखे उरतार। ढाडी का महल अगला, हर कै नाए प्यार। ढाडी की सेवा चाकरी, हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा। गुजरी जात गवार, जा सहो पाए अपना। गुर कै शब्द विचार, अंधन हर जप जापना। जे सतगुर मिले तिस पहो पवै, सा कुलवंती नार। सा हुकुम पछाणै कंत का, जिसनो कृपा कीती करतार। ओहो कुचजी कुलखणी, पर हर छोडी पतार। पै पै मल कटियै, निर्मल होवै शरीर। अंतर प्रगास मातूतम होवै, हर जप गुणी गहीर। पै विच बैसै पै रहै, पै विच कमावै कार। ऐथै सुख वडियाईया, दरगै मोख द्वार। पै ते निरपौ पाईऐ, मिल ज्योति ज्योति अपार। नानक खसमै पावै सा पली, जिसनो वापे बख्शे करतार। महला तीजा। सदा सदा सालाही है, सच्चे को बल जाओ। नानक एक छोड़ दूजे लगे, सा जेवा जल जाओ। पौड़ी अंसा अवतार उपायोन, पाओ दूजा किया। जो राजे राज कमाव दे, दुख सुख पिड़िया। ईश्वर ब्रह्मा सेव दे, अंत तिनी ना लिया। निरपौ निरंकार अलख है, गुरमुख प्रगटिया। तिथै सोग विजोग ना व्या पई, अस्त्र जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछे आवण जाण है, जेता है आकार। जिन एहो लेखा लिखिया, सोह प्रवाण। नानक जे को आप गणाए।

कड़ी मोहत न विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीरवरियाम किन ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जिन लै नर लाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किन ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कले साई उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यो जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने, जिता जन्मया पार आ पछाने, महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पुंच, ते आए द्या तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास त्यायन तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार, राख ले हो प्रभु अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांद्या खांद्या मोह कठा, पैनंद्या सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

चार पाव दोए सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल

बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी अलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुअलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जंती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं कीन्या परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्बाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिम

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवपूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्र

पित गली हर के संत बतावो मार्गो हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावलो तिस कारण हर ढोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो तिस बरिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी, हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़े आरी, हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ, जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी, ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दरगह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाछे शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुरचरणी चित लाइए, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे, सदा सदा हर त्याईए रहाओ, अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है, घट अवघट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है, उस्तत कर है सेवक मुन केते, तेरा यंतना कतहूं पाई है, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सतबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी, कब साधु संगत होई है, कोय न मेट प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कह सोई पल मानो, नाहिन का बोल कर दो, निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते, बिसरत जाई हम मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता, मेरी बहुत अयान पजरत, निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौ, आनंद रूप स्वामी भरत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं, गावत सुनत जब तो उधार है, बरन्या बरना सब हूं रहाओ, जहते उपजो तही समान्यो, जहते उपजो तही समायो, एह बिद जानी तब हूं, जहां जहां एह देही तारी, रहना पायो कब हूं, सुख आयो पै परम बिनासे, कृपाल हुए प्रभ जब हूं, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साह संग तज लब हूं। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच वत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ, अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो, ज्यो अपनो स्वामी सुख मानै, ता मैं शोभा पावो, दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो, सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचारियो रहाओ, कोट प्राद मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो। देव गंधारी मन सगल सियान परही, करण करावन हर स्वामी, नानक ओट गही रहाओ,
ਆਪ ਮੇਟ ਪਏ ਸਰਨਾਈ, ਇਹ ਮਤ ਸਾਧੂ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲਹੀ, ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਪ ਨਹਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਨਾ ਪਹੀ, ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂੰ ਜਾਤੇ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਿਨਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ, ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਮਹਾ ਕਿਰਵਖ ਕੋਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ, ਸੋਭਤ ਜਾਗ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कत हूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पारे उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरने आयो रख नहारे रहाओ। सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंति वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाऊं साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईऐ। राग देव गंधारी महला पंजवां घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रे रोम ना समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचै। भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै। साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांछै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै। आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुराछै। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहु मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो। मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पय प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुल समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत। एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले। प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना सब

हाँ करच तराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचरद दिन रात अगम अगम ठाकरे आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कहन ना जाई परै परात देव गंधारी महला पंजवां त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अनक ओही रे एक समार रहाओ सफल मूर्त गुर मेरे माथे जत कत पेखो तत साथे चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ्या था बड़ा प्र मेरा कड़कड़ अंतर साहेब नेरा ताकी सरण आसर प्रभ नानक जाका अंतना पारा वार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे माने उल्टी रे सागर स्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे रहाओ ज्यो काजर पर मंदर राखेओ जो पैसा कालू खीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे मांगो दान किरपाल किरपा निद मेरा मुख साकत संग ना जु

यह मन नैक ना कहो कर सीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत ते ना टरै रहाओ। मद माया कै भयो बावरो हर जस नहि उचरै कर परपंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै। सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कांतरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काय सरै। देव गंधारी महला नावा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप आरफुन गृह की नार रहाओ। तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार आद करी को न रख करते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित जाते हो ते उधार। देव गंधारी महला नावा जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ। मेरो मेरो सब कहत है हित स्यों बांध्यो चीत अंतकाल संगी नह को ए अचल जहै रीत। मन मूर्ख अजू न समझत सिख दे हार्यो नीत नानक पौजल पार पर जौ गावै प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिहागड़ा चौप दे महला पंजवा कर दूजा दूतन संगरिया भयंगन बसरिया अन क्यों परिया तौ मैं हर हर करिया। तौ सुख सहजरिया रहाओ मिथन मोहरिया अन कौ मेरिया विच घूमन किरिया। सगल पटरिया बिरख एकत्रिया बहु बंदह परिया थिरसाज सफरिया। जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिहागड़ा महला नावा हर की गतने को जाने जोगी जति तपी पचहारे अरबो लोक सियाने रहाओ। छिन में राव रंक कौ करई राव रंक कर डारे रीते परे परे सख नावै जै ता को व्यवहारे। अपनी माया आप सारी आपै देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रहै न्यारा। अगंत अपार अलख निरंजन जेहे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चित लायो। राग बिहागड़ा।

दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको ओंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रह निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईऐ प्रभ ते आईऐ जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजियै अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वटपागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे भाणे बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराणे तित ग्रह सोहलड़े कोड़ नंदा मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्त उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पैसिंद सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधु हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बाण त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्रभ प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिय देहे नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पे खे जीजिय
समर्थ पूर्ण

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तप्त नाकत बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगै। जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो, अमै सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संतै संग मिलै जप पूर्ण कामा राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हर निमुख मनो ना बिसरै। आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीशर, अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जम गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तब तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पहिता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा, बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइय, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताइय। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कले सह भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण समर्थ स्वामी पैज राखो मोरी। जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चल, बिना गोविंद नामा देश वेस स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कट कट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नर पत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हाँ हाँ करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काड लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदन रह सदा गुण गाए, विणकर मैं कने ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए, गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए, शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दो कटी है, हम मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप की तोन कंचन, आपे ठाकर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन।
ਆਪੇ ਸਭਗਟ ਭੋਗਵੈ ਸਵਾਮੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਯੰਜਨ, ਆਪ ਬੇਕ ਆਪ ਸਭੇਤਾ, ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਜਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਲਾਹੇ ਨਰਜੈ, ਤੁਧ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵੱਡਨ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਦਨਾ, ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਹੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠਵਰ ਨਾ ਪਾਵਹੀ, ਮਰ ਜਮੈ ਆਵੈ ਜਾਹੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ, ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਚਾਕਰੀ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਨ ਉਧਾਰ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਚਾੜ ਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਪਾਦਾ, ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੰਨ ਕਵਾਣੇ, ਆਪੇ ਮਿਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਬਾਲਕ ਕਰੇ ਸਿਆਣੇ। ਇੱਕ ਥੈ ਪੜ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਆਪੇ, ਇੱਕ ਥੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਜਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਪਾਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੇ। ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ, ਮਨੁਆ ਪੀਵਣਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ।

पहला काया लाहन आप मद मजलस त्रिसना तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल हित मद पीते नानका बहुते खटिए बिकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक हो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी तार सतसंग स्यो मेलाप होए लिव कटोरी अमृत परी पीपी कटे बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे शिव शंकरा महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फ्रै बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेश आपे सुर स्वरूप सियाणी आपना चोज कर वेखै आपे आपे सबना जिया कह जानी श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुरप्रसादी दुबदा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया श्लोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़े खेहे जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवा घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्तै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंडनो आप करे सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारे होए कै सब समाले हो साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक अथ है सुख है अंदर रख सी अगे हरस्यो केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवै विच आए
ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ।

जिन जेवा रस न चखियो सा जेवा जल जाओ, अन रस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए, सबना नजर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे परजवे गोई, मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए, मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिले सच मिले सच नाम समाया, आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए, वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सहज सुभाए, सदा

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मने ता हर मिले ता विचों हम मैं जाए रहाओ। हम मैं सब शरीर है, हम मैं उपत होए, हम मैं वड्डा गुबार है। हम मैं विच बुझ न सके कोए, हम मैं विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हम मैं विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिलिया हम मैं गई, ता सच वसिया मन आए। सच कमावै सच रहै, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावै मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण पर

मेरी माया हाँ कर कर थाका उपाप बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी जो पिर पावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन कौ जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है, तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना, नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ांस।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब पाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाईया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाईया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगण सुजाना सुर नर सुगण सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम ना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहे समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सच

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बजावे दुख भुख संसार किए, सासा हो चुकावे। बिनवंत नानक जाए सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा। तेरे बंके लोयन दंतरी साला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला, सोवन टाला कृष्ण माला। जपो तुसी सहेली हो, जम द्वार ना हो खड़िया, सिख सुनो महेली हो,

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिंह रलिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणै कामण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनिध पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जनवड पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वन जी है जा सतगुर देव बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नामै पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किस आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागै माया के वापारा राम

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महल्ला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, साबिन से हो मैं पापा राम। जप हर नाम लथे अड़े जगता पर राम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते, दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा। आंदन सह समाध हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर, कृपा लेहु उबारे राम। हम पाप

देह अंधारी अंध सुनी नामे हुनिया नानक सफल जनम जय कट उठा सच तनी संत तिन खनी है वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाखिया गाने हर हरे अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्यो गुठा सुख पए दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत बेकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिया वन्या जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक सही कंडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा संत मिल जल जलै खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आपे आपे जानी है तह सुन सह समाध लागी एक एक वखाणी है आप भुगता आप मुगता आप आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलै खटाना बड़ा हंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रख जगत सगल दे हथा राम समरथ सरना जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हां कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता वर्ण चिहन ना जाए लखिया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कारण समरथा एह जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता राम भ्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवै गुण निधान पावै सो बहुत जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर त्याई है राम मन इच्छा फल पाई है राम मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है मिटे जमके त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मन मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगमा गोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कहण न जाई कोय ना सकै पहुचा आप यो पाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुखनाम भगती दर वजे अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा अलाहणिया एको अंकार सतगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जगत अंदर लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए काया हंस थिया वे छोड़ा जांदन पुन्ने मेरी माए जिहा लिखिया तिहा पाया जिहा प्रभ कमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह हो जिन जगत अंदर लाया साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना हो पयाना एथे तंदा कूड़ा चार दिहा आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना जो मेहमाना काहे गर्भ कीजै जित सेवे है दरगह सुख पाई है नाम तसै का लीजै आगे हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या विहाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सब ना हो पयाना जो तिस पावै समर्थ सोथी है हीलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सृजनहारो साचा सृजनहारो अलख्या पारो ताका अंत ना पाया आया तिनका सबल भया है एक मन जिनी तिहाया टाहे टाहे ओ सारे आपे हुक्म सवारन हारो जो तिस पावै समर्थ सोथी है हीलड़ा हो संसारो नानक रुना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो वाले वे कारण बाबा रोई है रोवन सगल बेकारो रोवन सगल बेकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै
ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੇ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ ਉਹ ਤਨ ਏ ਵੈ ਖੋਵੈ ਐਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ ਹੋਵਾ ਤਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵੋ।

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पायो।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, खिर मैं पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार, जिन साची बूझ बुझाई रहाओ। जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया, जन स्यों वाद रिचाई। माया मगन अहनस मग जो है, नाम ना लेवै मरै बिख खाई। गंदन वैन रता हितकारी, शब्द सुरत ना आई। रंग ना राता रस नहीं बेदया, मनमुख पत गवाई। साध सवा मैं सहज ना चाखिया, जेबा रस नहीं राई। मन तन तन अपना कर जानिया, दर की खबर ना पाई। अखी मीट चलिया अंधियारा, घर दर दिसै ना पाई। जमदर बाधा ठौर ना पावै, अपना किया कमाई। नदर करे ता अखी वेखा, कहना कथन न जाई। कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई। निरपौ निरंकार निरवैर, पूर्ण जो समाई। नानक गुरविन परम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोरठ महला पहला, दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन। चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका। मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा। जल थल महियल पर पुर लीना, आपे सर्ब समाणा रहाओ। जह जह देखा तै जो तुम्हारी, तेरा रूप कनेहा। एकत रूप फिर प्रसन्ना, कोई न किसी जेहा। अंडज जेरज उत्पुज सेतज, तेरे कीते जनता। एक पुरु मैं तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा, डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला, हाँ पापी पतत परम पाखंडी। तू निर्मल निरंकारी, अमृत चाख परम रसराते। ठाकर शरण तुम्हारी, करता तू मैं मान निमाने। मान महत नाम तन पल्ले, साचे शब्द समाने रहाओ। तू पूरा हम ऊरे ओछे, तू गौरा हम हौरे। तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही रचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे श्रीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाखिया पारिया गामिया गोचर। ना तिस काल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटों कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जंतो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरियै रे मना, जो बिरथा जावै सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, अठसठ तीर्थ।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदास लाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यों रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगता की सार करै आप राखै जो तेरे मन पाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड कमावे ना बुझे विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्ष नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाने मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटा खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सह सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किरबिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौमै बंधन कमाए जमन मरन सरी उप।

था पद चीना राम नाम सुख होई त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करे सो होई नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई सोरठ।

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा भाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हो तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान न कीजै शरण परिजै करै सो पला मनाइय सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इउं दर्शन हर जियो पाइय भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा पर पूरी रे पेखत सुन तो सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत मित कर वरनाओ क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना भरिया रे सोरठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सह सैन यार सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज पाया जे ठाकर कहो सुनते अगाध बोध सोरदय गुरदया रहाओ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करै बेनती राग ठाकर ते हम तेरी सरनाया जह भंडार गोबिंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक सौपे फिर लेखा मूल नाम लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण त्रिखाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनों विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जिह जन ओट कही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जिह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने जिह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जिह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राग संतन कै पाचे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर अथाह लहर मैं तारो तारन हारे माधव तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तुहरा रहाओ कीते कहो मेरे सम्मान करन हार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पाने खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीर ऊंचो अगमे अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पाया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जेती समगरी।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वाले वा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्द पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकी कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाय

चरण कमल बसेर दे अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ता कै बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार ना जाने जियो पिंड साज जन रचिया बल अपनो कर मन है मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो कुछ करे सोई सोई जाने रह न कछु ऐशानी रहाओ जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ उपजे अनक बेकारा बहुत जोन भरमत दुख पाया हम मैं बंधन के पारा।

पूर्ण पूर्ण रहो सर्व में जल थल रमैया आहयो रहाओ। गुण निधान नानक जस गावै सतगुर भरम चुकायो। सर्व निवासी सदा अलेपा समय रिया समायो। सोरठ महला पंजवा जाकै सिमरन होए आनंदा। बिनसै जन मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निध पावै बहुर ना तृष्णा भुखी। जा को नाम लै तू सुखी सास सास त्यावो ठाकर कहो। मन तन जिया रे मुखी रहाओ सांत पावै होवै मन शीतल। अग्न ना अंतर तुखी गुरु नानक कहो प्रभु दिखाया। जल थल तिर भवन रुखी सोरठ महला पंजवा। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो। एह पीतर ते इनको डारो अपन निकट बुलावो। अपनी विद्या आप जनावो हर जन मंगल गावो रहाओ। बिसर नाही कबहू ही ते एह बिद मन मैं पावो। गुरपुरा भेट्यो वडभागी जन नानक कतै ना तावो। सोरठ महला पंजवा। जा कै सिमरण सब कछ पाई बिरथी काल ना जाई। तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो जो समय रिया समाई। हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आवो। पूर्ण हो वै काला रहाओ। सार संभालै नित प्रतपालै प्रेम सहित गल लावै। कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै। सोरठ महला पंजवा। अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई। गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की तूर नानक दास बंश है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा। जन्म जन्म के दुख निवारै सूखा मन साधारै दर्शन भेटत हो।

होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श लए सब सच्चा साहेब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवां, बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर, सगले रोग बेदारे, गुरपुरे की सरनी उबरे, कार्य सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, तापो तारिया सतगुर पूरै, अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच शब्द सतपाखिया। सोरठ महला पंजवां, पए कृपा

जिन जिन साज संग पाया सो प्रभ अवतराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी परमेसर आप हो रखवाला सांत सहज सुखिन मैं उपजे मन हो।

कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई, तो दयार बीठ लो पायो। सब रहो अंदेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो। सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा, सोरठ महला पंजवां। गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी। कर्म ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया तारी। नाम परयो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी।

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावै, हरे अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाइयै। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाइयै, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जल नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन ना

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काल सवारे, हरे अपने।

करतै पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै। सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा जाना।

आओ सुनी पुकार सम्रथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे। निस्बासर बिख्यान कौ तावत कह बिद रोकौता है रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै। पर तन पर दारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागयो दुख में संग न होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे।

असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमै पावै हृदय शब्द सदा पैरचिया गुर की कार कमावै।

मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जह बा नेत्र सोत्र सच राते जल बूजी तुझै बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिख्या नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साचा पूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हरनाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वड्याई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हौ मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का इस्वार नहारा। ओना की रीस करे सो विगुच्चै, जिन हर

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चितलाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हर आप वसै मन आए फिर का हुक्म ना जान पाई सा कु लखनी कुनार मन अठकार कमावनी पाई विणना में कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चा बैराग आंदन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुमनी पाई दरगै नाही थाओ गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई मिल प्रीतम साज समाओ एत जन्म हर ना चेत्यो पाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोहायोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समालै सुख वसै पाई सदा सुख सांस शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ महला पंजवां कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें यो पाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिया क्यों देखिए पाई करता एक या कथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जा कै कर सब किश है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवै पाई ऊंचा गम्य अपार जी जन

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिन तू विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना कीजई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खटकर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मै हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिलै खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर भावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया। श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया, तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै, सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिए, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइय। श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखां को ना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखां नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा। से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए, जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप से